तुझे प्यार करेगा जैसे मैं ये करती हूँ। खाउदर आदरे करने मैं भांग आदरे करना वाके उलंगा क्वागे होया पावला गियो मम वाला कुलाक विला पास संगे ना वो एक दान ना।

कौन तुझे यू प्यार करेगा जैसे मैं ये करती हूँ, खुद आदर करने में मांग आदर करना वागे मालनिया बेसीली ए मागे आदरणीय गुरु मैनियो ए विवाह काई सिंगल विषय कले पंति बारु गुरु तुमिया ए आगे दारु उने आपी ए अंबलन गोड़ा प्रजापति गौतमी बालिकावे एक दस नौ से अनो हतरे ऑल अवेल कर पुआपी चिर मिहिरी माता कदा सुबह मंदार हम रात्रि आकादरणीय धरंगा ये माता के हरी ही सुंदर है आप हो यात्री तेरे अन्न दिए ना ना निहाने उम्मीद लगाना माध्य पुलिस कॉलेज आवे हरी लसना है मगे हिते रंधुने खाओ शाल्ले मैडम सुहासा खाद कुसुम बामला विन ने लागे ना महाबाबून था वो मावक में हुआ लाक मावगे सिउ को निन पैमनी दूप तो नमीन ऐ सेने गंबूरीन में था नुआ गुरु के तरह अपट सिटी आदरणीय मा अम्मा कौशल्य मैडम तरंगा हर्षनी माधी पोलीन